प्रिय सज्जन, संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्।